0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओ, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है बुधवारीय आम दर्शन समारोह में संत पापा लियो की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा लियो चौदवे ने अपने बुधवारीय आम दर्शन समारोह के अवसर पर वैटिकन संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में उपस्थित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों का अभिवादन करते हुए कहा।
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Continuando il nostro percorso sulla Costituzione pastorale Gaudium et Spes.
1: प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात और सुस्वागतम। वैटिकन द्वितीय महाधर्म सभा के प्रेरितिक धर्म सिद्धांत गाउडियम एट स्पेस की चर्चा करते हुए आज हम इसके तृतीय अध्याय के प्रथम भाग में आते हैं, जिसका एक दिलचस्प शीर्षक है, संपूर्ण दुनिया में मानव के क्रियाकलाप। हमारे लिए यहाँ मुख्य सवाल यह है, दुनिया में मानव के क्रियाकलाप का मूल्य क्या है, और इसलिए तकनीकी, सामाजिक और वैज्ञानिक विकास हमारे लिए क्या अर्थ रखते हैं। हम इस बात को याद कर सकते हैं कि वैटिकन महासभा की समाप्ति के 4 वर्षों से कम समय के अंतराल में 20 से 21 जुलाई सन 1969 की रात को मानव ने पहली बार चंद्रमा में अपने कदम रखे। संत पापा लियो चौदवें ने कहा कि ईश्वर के प्रति रूप में बनाया गया मानव प्रगति का वाहक है। अपनी स्वतंत्रता और बौद्धिक क्षमता में वह अपने ज्ञान में वृद्धि करता है, जिसके द्वारा वह एक पूरे समाज को आगे ले चलता है। हम इसे एक के बाद एक पीढ़ियों के रहन सहन की स्थितियों में हुए सुधारों पर चिंतन करते हुए सहज ही देख सकते हैं। वास्तव में दस्तावेज हमें कहता है, बहुत सारी लाभदायक चीजें जिनकी चाह हमने की, विशेषकर दिव्य शक्ति से मानव ने अपनी कोशिश से उन्हें अपने लिए हासिल कर लिया है। यही कारण है कुछ विचारकों ने वैज्ञानिक खोज और तकनीकी प्रगति को इस भांति प्रस्तुत किया है, मानो वे कुछ ऐसी चीजें हों जो ईश्वर से मनुष्य के संबंध को कमजोर बनाता हो, इस हद तक कि यह छिछले जान पड़ती हो, या यहाँ तक कि वे ख्रिस्तीय विश्वास का विरोध करते हों। और इस जीवन दर्शन ने समकालीन मानव में एक परिवर्तन लाया है, जहाँ वह पहले के युगों की अपेक्षा आज की दुनिया को दूसरी निगाहों से देखता है। ऐसे पूर्व ग्रह विशेषकर पश्चिमी संस्कृति में मुख्य रूप से व्याप्त हैं, जिसने ख्रिस्तीय प्रकटीकरण से अपने संबंध को खो दिया है। ख्रिस्तीयता उपरांत मानववादी विचारकों ने मानव और ईश्वर को गलत तरीके से एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी स्वरूप प्रस्तुत किया है। ऐसा माना जाता है कि अपने ज्ञान, अपनी स्वतंत्रता और अपनी प्रगति को साबित करने के लिए मानव को चाहिए कि वह खुद को ईश्वर से मुक्त करे। यद्यपि अंततः कोई ईश्वर के संबंध से अपने को अलग करता, तो कोई भी व्यक्ति मानव के रूप में अपने से परे जाने के मूल्य की संभावना को सुदृढ़ करने की योग्यता खो देता है। यह नास्तिक मानवतावाद की त्रासदी है, जिसकी उचित व्याख्या एक प्रसिद्ध ईश शास्त्री हेनरी दे ल्यूबाक ने द्वितीय वैटिकन महासभा के दौरान की। संत पापा लियो चौदवें ने कहा कि धर्म सभा इस संबंध में एक स्पष्ट उत्तर देना चाहती है। गाउडियम एट स्पेस कहता है ख्रिस्तीय सही मायने में यह मान सकते हैं कि अपनी मेहनत में वे सृष्टिकर्ता के रचना को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने साथी मनुष्यों की भलाई हेतु कार्य कर रहे हैं और अपने व्यक्तिगत मेहनत से इतिहास में ईश्वर की योजना को साकार करने में योगदान दे रहे हैं। वास्तव में धर्म सिद्धांत आगे कहता है, मानव अपनी प्रतिभा और शक्ति से जो काम करता है उन्हें ईश्वर की शक्ति के खिलाफ या मानव को ईश्वर का प्रतिद्वंदी मानने के बजाय ख्रिस्तीय यह मानते हैं कि मानव जाति की सफलताएं ईश्वर की कृपा और उनकी रहस्यमयी योजना के फूलने फलने का ही एक संकेत है। असल में ईश्वर ने नर और नारियों के हाथों में एक ऐसी रचना सौंपी है जो अब भी विकास की यात्रा पर है, यानी वह बढ़ रही है और विकसित हो रही है ताकि वे अपनी समझदारी भरे कामों से उसे पूर्णता तक पहुंचा सकें। संत पापा लियो ने कहा कि यहाँ हम शरीर धारण के महत्वपूर्ण रहस्य को पाते हैं। मानवता और उसके कार्य, विकास और श्रेष्ठ प्राणियों की स्वतंत्रता ईश्वर से मिलन पर ना तो उसमें समा जाती है और ना ही खत्म होती है, बल्कि वे पूरी तरह से मसीह में समाहित हो जाते हैं।
2: Infatti, è in lui che essa trova piena verità e libertà.
1: वे स्वतंत्र और सक्रिय रूप में ख्रिस्त में बनी रहती हैं। असल में यह वे हैं जिनमें वे अपनी पूर्ण सच्चाई और स्वतंत्रता को प्राप्त करती हैं। उससे भी बढ़कर यूखारिस्तीय समारोह में मानव की मेहनत का फल रोटी और दाखरस के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। वे हर दिन वेदी में ख्रिस्त के शरीर और रक्त में परिणत होने हेतु अर्पित किए जाते हैं। इस संदर्भ में संत पापा ने कहा, हम एक महत्वपूर्ण सच्चाई की अभिव्यक्ति को पाते हैं। ईश्वर से मिलन हेतु मानव को चाहिए कि वह इस पृथ्वी पर अपने कार्यों का परित्याग ना करे, बल्कि अपने बुलाहट को पूर्ण रूपेण जिए, अपने प्रतिदिन के कार्यों को निष्ठा और पवित्रता में करता जाए। ख्रिस्तीय दूसरे लोगों की भांति अपने में मानव के शहर का निर्माण करने में संलग्न है, सारी चीजों को पूर्णता की ओर लेने और ईश्वर से मिलन तथा उन लोगों को इस अंतिम लक्ष्य की याद दिलाते हैं जिनके संग वे प्रगति, विज्ञान और जीवन का सफर साझा करते हैं। संत पापा लियो ने कहा कि पृथ्वी का विकास निश्चित रूप से ईश्वर के राज्य के विकास की तुलना में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यद्यपि धर्म सभा इस बात को सुनिश्चित करती है कि जिस हद तक पहली चीज मानव समाज को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करने में योगदान दे सकती है, उसी हद तक वह ईश्वरीय राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारी प्रकृति के सभी फल और प्रयास हम उन्हें पुनः प्राप्त करेंगे, लेकिन वे दाग धब्बों से मुक्त, चमकाया और पूरी तरह बदला हुआ रहेगा। अंततः हम इस बात की याद करें कि सच्चे मानवीय विकास के लिए अर्थात पूर्ण मानव विकास और सबों का हित तकनीकी और वैज्ञानिक विकास को प्रेम से प्रेरित और संचालित होने की मांग करती है।
2: Solo così potrà essere posto sempre a difesa della dignità dell'uomo e promuovere le condizioni di vita di tutti.
1: केवल ऐसा करने के द्वारा यह मानवीय सम्मान की सेवा और सबों के जीवन विकास हेतु उपयोगी हो पाएगा, विशेषकर वे जो अति जरूरत की स्थिति में हैं। प्रिय भाइयों एवं बहनों, द्वितीय वैटिकन महासभा हमें ज्ञान की रोटी को एक दूसरे के संग साझा करने और उसे कैसे करना है उसके लिए निमंत्रण देती है, जिससे हर व्यक्ति और हर जन अपनी क्षमताओं का विकास कर सके और ईश्वर की सहायता के संग मिलकर हम सभी एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें। इतना कहने के बाद संत पापा लियो ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सबों के संग हे पिता हमारी प्रार्थना का पाठ करते हुए सबों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। आज बुधवार 23 सितंबर को संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में आम दर्शन समारोह के अंत में इटाली भाषी विश्वासियों का अभिवादन करते हुए संत पापा लियो 14वें ने प्रवासियों और शरणार्थियों के 112वें विश्व दिवस के अवसर पर दिल से अपील की। यह दिवस आने वाले रविवार 27 सितंबर को मनाया जाएगा। उनके यह अपील इसलिए भी भावुक थी क्योंकि उन्होंने इसमें उन हजार कमजोर बच्चों और किशोरों के दुख दर्द पर ध्यान दिलाया जिन्हें अपना देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया है। वे अक्सर पलायन के रास्तों पर असहनीय हिंसा, दुख, यातना, शोषण और सदमे वाले हालात के शिकार होते हैं। ऐसे रास्ते जहां अक्सर उनकी जान भी चली जाती है। इनमें से कोई एक बच्चा भी प्रवासियों और शरणार्थियों के 112वें विश्व दिवस के आयोजन का मुख्य केंद्र है। इस आयोजन का मकसद दुनिया भर में हो रहे पलायन के दौरान सबसे कमजोर लोगों यानी नाबालिगों की ओर सबका ध्यान खींचना है। उनकी गरिमा को अक्सर कुचला जाता है। न सिर्फ बेहतर जिंदगी की तलाश में खतरनाक सफर करने के दौरान उन्हें तकलीफों और हिंसा को झेलना पड़ता है बल्कि मंजिल पहुंचने के बाद भी उन्हें अक्सर ठुकरा दिया जाता है, अलग थलग कर दिया जाता है और हाशिए पर ढकेल दिया जाता है। संत पापा लियो 14वें ने 14 अगस्त को जारी प्रवासियों और शरणार्थियों के विश्व दिवस के संदेश में सुरक्षा अधिकारों की पूरी हिफाजत और उनकी गरिमा व सांस्कृतिक पहचान के सम्मान की बात कही थी। इन उपायों का मकसद कट्टरपंथ की ओर बढ़ने के अतिरिक्त खतरे को रोकना है। संत पापा ने दस्तावेज में कहा, आज विस्थापित नाबालिगों की पुकार ईश्वर तक पहुँच रही है। उन्होंने संस्थाओं से परिवारों को फिर से मिलाने और वापस भेजे जाने से होने वाले सदमे को रोकने का आग्रह किया। यह संदेश नजरिया बदलने की तत्काल जरूरत पर जोर देता है जिसमें हर बच्चे और किशोर की सुरक्षा व गरिमा को केंद्र में रखा जाए और बच्चे के सर्वोत्तम हित के सिद्धांत को फिर से दोहराया जाए। उधर गाजा में 3 साल की बमबारी से लगभग पूरी तरह तबाह हो चुके शहरी इलाके में स्कूल की घंटी की आवाज किसी चमत्कार जैसी लगती है। मंगलवार 22 सितंबर को गाजा में यरूशलेम के लैटिन धर्म प्रांतीय स्कूल, जो पवित्र परिवार कैथोलिक पल्ली से जुड़ा है, आधिकारिक तौर पर अपने दरवाजे फिर से खोल दिया है जिसमें कुल 1005 छात्रों का स्वागत है। किंडरगार्टन में 2 से 5 साल के बच्चों से लेकर प्राथमिक और मिडिल स्कूल, हाई स्कूल के छात्र सभी बिल्डिंग की दहलीज पार कर चुके हैं जिससे पूरे ख्रिस्तीय समुदाय को उम्मीद और सामान्य हालात की एक किरण मिली है। गाजा के पल्ली पुरोहित ने उम्मीद जताई कि यह जगह ऐसी बनेगी जहां समुदाय के लोगों के बीच प्यार, आपसी सम्मान और एक दूसरे के दुख दर्द को समझने और ठीक होने की भावना बढ़ेगी। उधर यमन में रात भर धमाके हुए। देश के पश्चिमी तट पर स्थित 23 प्रांत में धमाकों की आवाजें सुनाई देने के अलावा पास ही अलमुखा के ऊपर सऊदी अरब का एक टोही ड्रोन भी मार गिराया गया। इसके अलावा कल जेद्दा में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सऊदी किंग सलमान ने मक्का, जो इस्लाम का पवित्र शहर है, पर हमला करने की हूती विद्रोहियों की हालिया कोशिश की निंदा की और इसे इस्लामी स्थलों की पवित्रता के खिलाफ एक शर्मनाक अपराध बतलाया। हुर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने और बाब अल मंडेप में हुई घटनाओं के बाद ग्लोबल एनर्जी ट्रेड के लिए अहम पूर्व पश्चिम पाइपलाइन को बार बार हुती हमलों के कारण 13 सितंबर को बंद कर दिया गया था। अब कम क्षमता के साथ इसका संचालन फिर से शुरू हो गया है परंतु सामान्य कामकाज बहाल होने में कई हफ्ते लगेंगे। इस बीच विद्रोही अपने हमले तेज कर रहे हैं और ताइज और लाइज प्रांतों के बीच रणनीतिक रूप से अहम ऊंचे इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लाल सागर के तट का संपर्क यहूदी समर्थित बाकी इलाकों से काटा जा सके। ऐसी स्थिति में सऊदी अरब अमेरिकी समर्थन पर निर्भर नहीं रह सकता, लेकिन उसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री बर्नहम का समर्थन मिला है।
हाल के दिनों में हालात बिगड़ने के बाद यमन अब टूटने की कगार पर है। 12 साल की लड़ाई की वजह से लगभग 5 मिलियन लोगों के अलावा 1 लाख लोग देश के अंदर ही बेघर हो गए हैं। उधर मध्य पूर्व की सरकारें इलाके में तनाव बढ़ने की आशंका को देखते हुए तैयारी कर रही हैं। ईरान का दावा है कि उसे ऐसी खुफिया जानकारी मिली है जिससे पता चलता है कि अमेरिका इस्लामिक गणराज्य के खिलाफ फिर से बमबारी करने की योजना बना रहा है। ये चिंताएं तब और बढ़ गई जब अमेरिकी राष्ट्रपति कैंप डेविड की सप्ताहांत यात्रा से जल्दी लौट आए। उनके कार्यक्रम में इस बदलाव की कोई आधिकारिक वजह नहीं बताई गई। इसी बीच अमेरिकी विदेश विभाग ने मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी नागरिकों के लिए सुरक्षा को लेकर एक नया अलर्ट जारी किया। ईरान के इस्लामिक क्रांतिकारी गार्ड कोर ने चेतावनी दी है कि देश पर किसी भी हमले का जवाब बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई से दिया जाएगा। ईरानी अधिकारियों ने यह भी कहा है कि जवाबी कार्रवाई हिंद महासागर में तैनात अमेरिकी नौसेना बलों तक भी हो सकती है। यमन के ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर किए गए हमलों के बाद बयानों और अटकलों के दौर तेज हो गए हैं, जिससे इलाके में बड़े टकराव का डर पैदा हो गया है। इस बीच रॉयटर्स और जापान की क्योडो न्यूज की अलग अलग रिपोर्टों के मुताबिक ईरान ने प्रस्ताव दिया है कि अगर अमेरिका अपना सैन्य दबाव कम करे और ईरानी बंदरगाहों पर लगी पाबंदियां हटा ले तो वह 7 दिनों के भीतर हुर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोल देगा। ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह प्रस्ताव मध्यस्थों के जरिए अमेरिका तक पहले ही पहुँचाया जा चुका है। हुर्मुज जलडमरू मध्य बढ़ते तनाव के केंद्र में रहा है क्योंकि वैश्विक तेल आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय नौ परिवहन पर किसी भी संघर्ष के संभावित प्रभाव पर चिंताएं बढ़ रही हैं। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है बुधवार ये आम दर्शन समारोह में संत पापा लियो की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा लियो चौदहवें ने अपने बुधवारीय आम दर्शन समारोह के अवसर पर वैटिकन संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में उपस्थित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों का अभिवादन करते हुए कहा।
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Continuando il nostro percorso sulla Costituzione pastorale Gaudium et Spes.
1: प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात और सुस्वागतम। वैटिकन द्वितीय महाधर्म सभा के प्रेरितिक धर्म सिद्धांत गाउडियम एट स्पेस की चर्चा करते हुए आज हम इसके तृतीय अध्याय के प्रथम भाग में आते हैं, जिसका एक दिलचस्प शीर्षक है, संपूर्ण दुनिया में मानव के क्रियाकलाप। हमारे लिए यहाँ मुख्य सवाल यह है, दुनिया में मानव के क्रियाकलाप का मूल्य क्या है, और इसलिए तकनीकी, सामाजिक और वैज्ञानिक विकास हमारे लिए क्या अर्थ रखते हैं। हम इस बात को याद कर सकते हैं कि वैटिकन महासभा की समाप्ति के 4 वर्षों से कम समय के अंतराल में 20 से 21 जुलाई सन 1969 की रात को मानव ने पहली बार चंद्रमा में अपने कदम रखे। संत पापा लियो चौदहवें ने कहा कि ईश्वर के प्रति रूप में बनाया गया मानव प्रगति का वाहक है। अपनी स्वतंत्रता और बौद्धिक क्षमता में वह अपने ज्ञान में वृद्धि करता है, जिसके द्वारा वह एक पूरे समाज को आगे ले चलता है। हम इसे एक के बाद एक पीढ़ियों के रहन सहन की स्थितियों में हुए सुधारों पर चिंतन करते हुए सहज ही देख सकते हैं। वास्तव में दस्तावेज हमें कहता है, बहुत सारी लाभदायक चीजें जिनकी चाह हमने की, विशेषकर दिव्य शक्ति से मानव ने अपनी कोशिश से उन्हें अपने लिए हासिल कर लिया है। यही कारण है कुछ विचारकों ने वैज्ञानिक खोज और तकनीकी प्रगति को इस भांति प्रस्तुत किया है, मानो वे कुछ ऐसी चीजें हों जो ईश्वर से मनुष्य के संबंध को कमजोर बनाता हो, इस हद तक कि यह छिछले जान पड़ती हो, या यहाँ तक कि वे ख्रिस्ती विश्वास का विरोध करते हो। और इस जीवन दर्शन ने समकालीन मानव में एक परिवर्तन लाया है, जहाँ वह पहले के युगों की अपेक्षा आज की दुनिया को दूसरी निगाहों से देखता है। ऐसे पूर्व ग्रह विशेषकर पश्चिमी संस्कृति में मुख्य रूप से व्याप्त हैं, जिसने ख्रिस्तीय प्रकटीकरण से अपने संबंध को खो दिया है। ख्रिस्तीयता उपरांत मानववादी विचारकों ने मानव और ईश्वर को गलत तरीके से एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी स्वरूप प्रस्तुत किया है। ऐसा माना जाता है कि अपने ज्ञान, अपनी स्वतंत्रता और अपनी प्रगति को साबित करने के लिए मानव को चाहिए कि वह खुद को ईश्वर से मुक्त करे। यद्यपि अंततः कोई ईश्वर के संबंध से अपने को अलग करता, तो कोई भी व्यक्ति मानव के रूप में अपने से परे जाने के मूल्य की संभावना को सुदृढ़ करने की योग्यता खो देता है। यह नास्तिक मानवतावाद की त्रासदी है, जिसकी उचित व्याख्या एक प्रसिद्ध ईश शास्त्री हेनरी दे ल्यूबाक ने द्वितीय वैटिकन महासभा के दौरान की। संत पापा लियो चौदहवें ने कहा कि धर्म सभा इस संबंध में एक स्पष्ट उत्तर देना चाहती है। गाउडियम एट स्पेस कहता है, ख्रिस्तीय सही मायने में यह मान सकते हैं कि अपनी मेहनत में वे सृष्टिकर्ता के रचना को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने साथी मनुष्यों की भलाई हेतु कार्य कर रहे हैं और अपने व्यक्तिगत मेहनत से इतिहास में ईश्वर की योजना को साकार करने में योगदान दे रहे हैं। वास्तव में धर्म सिद्धांत आगे कहता है, मानव अपनी प्रतिभा और शक्ति से जो काम करता है उन्हें ईश्वर की शक्ति के खिलाफ या मानव को ईश्वर का प्रतिद्वंदी मानने की बजाय ख्रिस्तीय यह मानते हैं कि मानव जाति की सफलताएं ईश्वर की कृपा और उनकी रहस्यमयी योजना के फूलने फलने का ही एक संकेत है। असल में ईश्वर ने नर और नारियों के हाथों में एक ऐसी रचना सौंपी है जो अब भी विकास की यात्रा पर है, यानी वह बढ़ रही है और विकसित हो रही है ताकि वे अपनी समझदारी भरे कामों से उसे पूर्णता तक पहुंचा सकें। संत पापा लियो ने कहा कि यहां हम शरीर धारण के महत्वपूर्ण रहस्य को पाते हैं। मानवता और उसके कार्य विकास और श्रेष्ठ प्राणियों की स्वतंत्रता ईश्वर से मिलन पर ना तो उसमें समा जाती है और ना ही खत्म होती है, बल्कि वे पूरी तरह से मसीह में समाहित हो जाते हैं।
2: Infatti, è in lui che essa trova piena verità e libertà.
1: वे स्वतंत्र और सक्रिय रूप में ख्रिस्त में बनी रहती हैं। असल में यह वे हैं जिनमें वे अपनी पूर्ण सच्चाई और स्वतंत्रता को प्राप्त करती हैं। उससे भी बढ़कर यूखारिस्तीय समारोह में मानव की मेहनत का फल रोटी और दाखरस के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। वे हर दिन वेदी में ख्रिस्त के शरीर और रक्त में परिणत होने हेतु अर्पित किए जाते हैं। इस संदर्भ में संत पापा ने कहा, हम एक महत्वपूर्ण सच्चाई की अभिव्यक्ति को पाते हैं। ईश्वर से मिलन हेतु मानव को चाहिए कि वह इस पृथ्वी पर अपने कार्यों का परित्याग ना करे, बल्कि अपने बुलाहट को पूर्ण रूपेण जिए, अपने प्रतिदिन के कार्यों को निष्ठा और पवित्रता में करता जाए। ख्रिस्तीय दूसरे लोगों की भांति अपने में मानव के शहर का निर्माण करने में संलग्न है, सारी चीजों को पूर्णता की ओर लेने और ईश्वर से मिलन तथा उन लोगों को इस अंतिम लक्ष्य की याद दिलाते हैं जिनके संग वे प्रगति विज्ञान और जीवन का सफर साझा करते हैं। संत पापा लियो ने कहा कि पृथ्वी का विकास निश्चित रूप से ईश्वर के राज्य के विकास की तुलना में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यद्यपि धर्म सभा इस बात को सुनिश्चित करती है कि जिस हद तक पहली चीज मानव समाज को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करने में योगदान दे सकती है, उसी हद तक वह ईश्वरीय राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारी प्रकृति के सभी फल और प्रयास हम उन्हें पुनः प्राप्त करेंगे, लेकिन वे दाग धब्बों से मुक्त चमकाया और पूरी तरह बदला हुआ रहेगा। अंततः हम इस बात की याद करें कि सच्चे मानवीय विकास के लिए अर्थात पूर्ण मानव विकास और सभों का हित तकनीकी और वैज्ञानिक विकास को प्रेम से प्रेरित और संचालित होने की मांग करती है।
2: Solo così potrà essere posto sempre a difesa della dignità dell'uomo e promuovere le condizioni di vita di tutti.
1: केवल ऐसा करने के द्वारा यह मानवीय सम्मान की सेवा और सभों के जीवन विकास हेतु उपयोगी हो पाएगा, विशेषकर वे जो अति जरूरत की स्थिति में हैं। प्रिय भाइयों एवं बहनों, द्वितीय वैटिकन महासभा हमें ज्ञान की रोटी को एक दूसरे के संग साझा करने और उसे कैसे करना है उसके लिए निमंत्रण देती है, जिससे हर व्यक्ति और हर जन अपनी क्षमताओं का विकास कर सके और ईश्वर की सहायता के संग मिलकर हम सभी एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें। इतना कहने के बाद संत पापा लियो ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सभों के संग हे पिता हमारी प्रार्थना का पाठ करते हुए सभों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। आज बुधवार 23 सितंबर को संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में आम दर्शन समारोह के अंत में इटाली भाषी विश्वासियों का अभिवादन करते हुए संत पापा लियो 14वें ने प्रवासियों और शरणार्थियों के 112वें विश्व दिवस के अवसर पर दिल से अपील की। यह दिवस आने वाले रविवार 27 सितंबर को मनाया जाएगा। उनके यह अपील इसलिए भी भावुक थी क्योंकि उन्होंने इसमें उन हजार कमजोर बच्चों और किशोरों के दुख दर्द पर ध्यान दिलाया जिन्हें अपना देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया है। वे अक्सर पलायन के रास्तों पर असहनीय हिंसा, दुख, यातना, शोषण और सदमे वाले हालात के शिकार होते हैं। ऐसे रास्ते जहां अक्सर उनकी जान भी चली जाती है। इनमें से कोई एक बच्चा भी प्रवासियों और शरणार्थियों के 112वें विश्व दिवस के आयोजन का मुख्य केंद्र है। इस आयोजन का मकसद दुनिया भर में हो रहे पलायन के दौरान सबसे कमजोर लोगों यानी नाबालिगों की ओर सबका ध्यान खींचना है। उनकी गरिमा को अक्सर कुचला जाता है। न सिर्फ बेहतर जिंदगी की तलाश में खतरनाक सफर करने के दौरान उन्हें तकलीफों और हिंसा को झेलना पड़ता है बल्कि मंजिल पहुंचने के बाद भी उन्हें अक्सर ठुकरा दिया जाता है, अलग थलग कर दिया जाता है और हाशिए पर ढकेल दिया जाता है। संत पापा लियो 14वें ने 14 अगस्त को जारी प्रवासियों और शरणार्थियों के विश्व दिवस के संदेश में सुरक्षा अधिकारों की पूरी हिफाजत और उनकी गरिमा व सांस्कृतिक पहचान के सम्मान की बात कही थी। इन उपायों का मकसद कट्टरपंथ की ओर बढ़ने के अतिरिक्त खतरे को रोकना है। संत पापा ने दस्तावेज में कहा, आज विस्थापित नाबालिगों की पुकार ईश्वर तक पहुँच रही है। उन्होंने संस्थाओं से परिवारों को फिर से मिलाने और वापस भेजे जाने से होने वाले सदमे को रोकने का आग्रह किया। यह संदेश नजरिया बदलने की तत्काल जरूरत पर जोर देता है जिसमें हर बच्चे और किशोर की सुरक्षा व गरिमा को केंद्र में रखा जाए और बच्चे के सर्वोत्तम हित के सिद्धांत को फिर से दोहराया जाए। उधर गाजा में 3 साल की बमबारी से लगभग पूरी तरह तबाह हो चुके शहरी इलाके में स्कूल की घंटी की आवाज़ किसी चमत्कार जैसी लगती है। मंगलवार 22 सितंबर को गाजा में यरूशलेम के लैटिन धर्म प्रांतीय स्कूल, जो पवित्र परिवार कैथोलिक पल्ली से जुड़ा है, आधिकारिक तौर पर अपने दरवाजे फिर से खोल दिया है जिसमें कुल 1005 छात्रों का स्वागत है। किंडरगार्टन में 2 से 5 साल के बच्चों से लेकर प्राथमिक और मिडिल स्कूल, हाई स्कूल के छात्र सभी बिल्डिंग की दहलीज पार कर चुके हैं जिससे पूरे ख्रिस्तीय समुदाय को उम्मीद और सामान्य हालात की एक किरण मिली है। गाजा के पल्ली पुरोहित ने उम्मीद जताई कि यह जगह ऐसी बनेगी जहां समुदाय के लोगों के बीच प्यार, आपसी सम्मान और एक दूसरे के दुख दर्द को समझने और ठीक होने की भावना बढ़ेगी। उधर यमन में रात भर धमाके हुए। देश के पश्चिमी तट पर स्थित 23 प्रांत में धमाकों की आवाजें सुनाई देने के अलावा पास ही अलमुखा के ऊपर सऊदी अरब का एक टोही ड्रोन भी मार गिराया गया। इसके अलावा कल जेद्दा में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सऊदी किंग सलमान ने मक्का, जो इस्लाम का पवित्र शहर है, पर हमला करने की हूती विद्रोहियों की हालिया कोशिश की निंदा की और इसे इस्लामी स्थलों की पवित्रता के खिलाफ एक शर्मनाक अपराध बतलाया। हुर्मुज जलदमरु मध्य के बंद होने और बाब अल मंडेप में हुई घटनाओं के बाद ग्लोबल एनर्जी ट्रेड के लिए अहम पूर्व पश्चिम पाइपलाइन को बार बार हूती हमलों के कारण 13 सितंबर को बंद कर दिया गया था। अब कम क्षमता के साथ इसका संचालन फिर से शुरू हो गया है परंतु सामान्य कामकाज बहाल होने में कई हफ्ते लगेंगे। इस बीच विद्रोही अपने हमले तेज कर रहे हैं और ताइज और लाइज प्रांतों के बीच रणनीतिक रूप से अहम ऊंचे इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लाल सागर के तट का संपर्क यहूदी समर्थित बाकी इलाकों से काटा जा सके। ऐसी स्थिति में सऊदी अरब अमेरिकी समर्थन पर निर्भर नहीं रह सकता, लेकिन उसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री बर्नहम का समर्थन मिला है।
हाल के दिनों में हालात बिगड़ने के बाद यमन अब टूटने की कगार पर है। 12 साल की लड़ाई की वजह से लगभग 5 मिलियन लोगों के अलावा 1 लाख लोग देश के अंदर ही बेघर हो गए हैं। उधर मध्य पूर्व की सरकारें इलाके में तनाव बढ़ने की आशंका को देखते हुए तैयारी कर रही हैं। ईरान का दावा है कि उसे ऐसी खुफिया जानकारी मिली है जिससे पता चलता है कि अमेरिका इस्लामिक गणराज्य के खिलाफ फिर से बमबारी करने की योजना बना रहा है। ये चिंताएं तब और बढ़ गई जब अमेरिकी राष्ट्रपति कैंप डेविड की सप्ताहांत यात्रा से जल्दी लौट आए। उनके कार्यक्रम में इस बदलाव की कोई आधिकारिक वजह नहीं बताई गई। इसी बीच अमेरिकी विदेश विभाग ने मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी नागरिकों के लिए सुरक्षा को लेकर एक नया अलर्ट जारी किया। ईरान के इस्लामिक क्रांतिकारी गार्ड कोर ने चेतावनी दी है कि देश पर किसी भी हमले का जवाब बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई से दिया जाएगा। ईरानी अधिकारियों ने यह भी कहा है कि जवाबी कार्रवाई हिंद महासागर में तैनात अमेरिकी नौसेना बलों तक भी हो सकती है। यमन के ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर किए गए हमलों के बाद बयानों और अटकलों के दौर तेज हो गए हैं, जिससे इलाके में बड़े टकराव का डर पैदा हो गया है। इस बीच रॉयटर्स और जापान की क्योडो न्यूज की अलग अलग रिपोर्टों के मुताबिक ईरान ने प्रस्ताव दिया है कि अगर अमेरिका अपना सैन्य दबाव कम करे और ईरानी बंदरगाहों पर लगी पाबंदियां हटा ले तो वह 7 दिनों के भीतर हुर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोल देगा। ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह प्रस्ताव मध्यस्थों के जरिए अमेरिका तक पहले ही पहुँचाया जा चुका है। हुर्मुज जलडमरू मध्य बढ़ते तनाव के केंद्र में रहा है क्योंकि वैश्विक तेल आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय नौ परिवहन पर किसी भी संघर्ष के संभावित प्रभाव पर चिंताएं बढ़ रही हैं। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विनती।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्म सार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र

0: और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब है और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेष कर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: ज्योति का पहला भेद, यीशु यर्दन नदी में बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ,

0: ज्योति का दूसरा भेद, काना के विवाह भोज में यीशु अपने आप को प्रकट करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
0: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
0: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
1: ज्योति का तीसरा भेद, मन परिवर्तन के आह्वान के साथ प्रभु यीशु ईश्वर के राज्य की घोषणा करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम।

0: कन्या, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: ज्योति का चौथा भेद, प्रभु यीशु का रूपांतरण हो जाता है। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: या कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: ज्योति का पांचवा भेद, पास का रहस्य के सांस्कारिक अभिव्यक्ति के रूप में प्रभु यीशु पवित्र परम प्रसाद की स्थापना करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुंवारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारियों की पवित्र कुंवारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति निर्मल माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति शुद्ध माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारी माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: निष्कलंक माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रिय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रशंसनीय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सुसमति की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सृष्टिकर्ता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: मुक्तिदाता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति चौकस कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्तुति योग्य कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शक्तिमती कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दयालु कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मनिष्ठ कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हमारे आनंद का मूल,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पवित्र आत्मा का मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भक्ति का उत्तम पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आध्यात्मिक गुलाब,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दाऊद का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हस्तिदंत का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ण मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संधि की मंजूषा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भोर का तारा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: रोगियों का स्वास्थ्य,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पापियों की शरण,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दुखियों का दिलासा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्तियों की सहायता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्गदूतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्म पुरखों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: नबियों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रेरितों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शहीदों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मवीरों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति पवित्र माला की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शांति की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।
1: हे प्रभु ईश्वर, कृपा

हे मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। पिता और

0: लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित उपदेशक ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं।

जिस तरह तुम नहीं जानते कि प्राण कहाँ जाते और माता के गर्भ में शरीर कैसे बनता है, उसी तरह तुम ईश्वर का कार्य नहीं समझ सकते जिसने सब कुछ को बनाया है। तुम प्रातः अपने खेत में बीज बो और संध्या तक काम करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हें किस काम में सफलता मिलेगी, इसमें या उसमें अथवा दोनों में। श्रोताओं, ये थे उपदेशक ग्रंथ के 11वें अध्याय के 5वें और 6वें पदों के शब्द। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। इन शब्दों से उपदेशक सुलेमान हमें फिर से मानवीय ज्ञान की सीमाओं का स्मरण दिलाता है। हम नहीं जानते कि प्राण कहाँ जाते और माता के गर्भ में शरीर कैसे बनता है। इसी तरह पृथ्वी पर ईश्वर के कार्य और उनके काम करने के पहलुओं को समझना मानव बुद्धि के परे है। माता के गर्भ में जीवन का प्रारंभ होता है, जो जन्म तक मनुष्य के लिए एक रहस्य ही बना रहता है। इन पदों में इस तथ्य को भी रेखांकित किया गया है कि सृष्टिकर्ता ईश्वर के कार्यों की थाह लेना हम मनुष्यों के लिए असंभव है। हवा के प्रवाह का उदाहरण देकर उपदेशक हमसे और युग युगांतर तक के मनुष्यों से ईश्वर के कार्यों के प्रति विनम्र बने रहने का अर्थ निवेदन करता है। उपदेशक का आग्रह है कि मनुष्य प्रातः अपने खेत में बीज बोए और संध्या तक काम करता रहे, क्योंकि मनुष्य यह नहीं जानता कि किस काम में उसे सफलता मिलेगी। इस पद में कृषि कार्य की छवि का उपयोग कर उपदेशक हमसे हर तरह के कामों के संपादन हेतु प्रोत्साहित करता है। भले ही काम कोई भी हो, वह भले ही सुबह किया जाए या शाम को, किसी भी समय काम से पीछे न हटा जाए, हर काम के लिए मनुष्य तत्पर रहे। मनुष्य किसी भी काम को करने से पीछे नहीं हटे, क्योंकि केवल काम करने के बाद ही वह फल की आशा कर सकता है। उपदेशक सुलेमान हम सबको अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है, ताकि हम विश्वासपूर्वक अपने समस्त कामों का संपादन करें, क्योंकि ऐसा कर ही हम सफलता का और अच्छे परिणाम का दीदार कर पाएंगे। इस प्रकार श्रोताओं, उपदेशक ग्रंथ का 11वां अध्याय हमें उदारता का आलिंगन करने के लिए आमंत्रित करता है। वह हमें स्वतंत्रता पूर्वक दान करने और अन्यों में अपनी संपत्ति साझा करने के लिए आमंत्रित करता है। हालांकि हमारी उदारता और हमारी भलाई का पुरस्कार हमें तुरंत नहीं दिखता, किंतु पुरस्कार अवश्य मिलेगा। विशेषकर इस अध्याय का 5वां पद स्मरण दिलाता है कि मानवीय समझ सीमित है और सृष्टिकर्ता ईश्वर के कार्यों को पूर्णतः बुद्धिगम्य करने में असमर्थ है। और 6वें पद की शिक्षा है कि प्रज्ञा और समझदारी के साथ हम अपने सभी कामों का संपादन करें तथा जीवन की अनिश्चितताओं के बावजूद मेहनत करते रहें।

और अब आइए 11वें अध्याय के अंतिम चार पद यानी कि 7 से लेकर 10 तक के पदों पर दृष्टिपात करें। इन पदों में उपदेशक ने जीवन के आनंद का विवरण दिया है। कहता है, ज्योति मधुर लगती है और आंखें सूर्य का प्रकाश देखकर प्रसन्न होती हैं। यदि मनुष्य वर्षों तक जीता रहता है तो उन सबों का आनंद मनाए, किंतु उसे याद रहे कि बुरे दिनों का अभाव नहीं और बाद में जो आएगा वह सब व्यर्थ है। युवक, अपनी जवानी में आनंद मनाओ, अपनी युवावस्था में मनोरंजन करो, अपने हृदय और अपनी आंखों की अभिलाषा पूरी करो, किंतु याद रखो कि ईश्वर तुम्हारे आचरण का लेखा मांगेगा। अपने हृदय से शोक को निकाल दो और अपने शरीर से कष्ट दूर कर दो, क्योंकि जीवन का प्रभात क्षण भंगुर है। श्रोताओ, सूर्य रोशनी प्रदान करता जिससे चित्त प्रसन्न हो जाता है तथा अंधकार समाप्त हो जाता है। उपदेशक का परामर्श है कि यदि किसी व्यक्ति की उम्र लंबी है, यदि वह दीर्घ काल तक जीता है, तो वह अपने जीवन के सभी वर्षों का आनंद उठाए, किंतु यह कदापि न भूले कि अच्छे दिनों के बाद बुरे दिनों का भी अभाव नहीं होगा। वस्तुतः उपदेशक का कहना है कि जीवन एक अनमोल वरदान है जिसका आनंद लिया जाना चाहिए, साथ ही भविष्य में आने वाली कठिनाइयों और समय की क्षण भंगुरता की सच्चाई को भी स्वीकार किया जाना चाहिए। श्रोताओ, 11वें अध्याय के 7वें पद में हमें एक बदलाव नजर आता है। यह पद जीवन की सरलता और उसके प्रतिदिन के वरदान होने का जश्न मनाता और लोगों को मुश्किल समय में यानी कि बीमारी का समय आने से पहले अथवा वृद्धावस्था के आने से पहले जीती जागती दुनिया की कद्र करने के लिए प्रोत्साहन देता है। इस प्रकार श्रोताओ, सूर्य और उसका प्रकाश जीवन का प्रतीक और मनुष्य को दिया गया अनमोल वरदान है। मनुष्य को हर दिन के लिए ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। फिर उक्त पद हमसे अपने समय की कीमत समझने और रोजमर्रा के पलों में खुशी ढूंढने का आग्रह करते हैं, साथ ही इसमें सच्चाई के साथ संतुलन रखने का भी अनुरोध किया गया है। उपदेशक स्मरण दिलाता है कि अच्छे दिन आते हैं, किंतु उनके बाद बुरे का आना भी संभव है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि हर दिन के उजाले के बाद रात का अंधकार अवश्यंभावी होता है। अस्तु, उपदेशक का परामर्श है कि अपने अच्छे दिनों में कुछ ऐसा करो जिससे कि तुम्हारे बुरे दिनों में भी तुम्हारा धैर्य न टूटे और साहस पूर्वक तुम सारी कठिनाइयों का सामना कर सको। आगे 11वें अध्याय के 9वें और 10वें पदों में उपदेशक युवकों का आह्वान कर कहता है कि जवानी में आप अवश्य आनंद मनाओ, मनोरंजन करो, किंतु अपना आचरण शुद्ध रखो। यह मत भूलो कि अपने सभी कार्यों के लिए तुम्हें उत्तर देना होगा। वह कहता है कि अपने हृदय से शोक को निकाल दो और अपने शरीर से कष्ट को दूर कर दो, क्योंकि जीवन का प्रभात क्षण भंगुर है। उपदेशक युवाओं को सावधान करता है कि वे अपनी जवानी का मजा अवश्य लें, स्वतंत्रता से जिएं, किंतु इस बात को कदापि न भूलें कि उन्हें अपने किए प्रत्येक कर्म का फल मिलेगा। यह कदापि न भूलें कि ईश्वर उन्हें उनके चयनों और उनके निर्णयों के लिए जिम्मेदार ठहराएंगे। प्रिय युवाओं, जवानी और जोश जल्दी ही बीत जाता है, इसलिए यौवन के वर्षों को हम कड़वाहट, नाराजगी अथवा बेमतलब के बोझ पर बर्बाद न करें, बल्कि इन अच्छे वर्षों का सदुपयोग करें। इन वर्षों में आज़ादी और आनंद के बीच कभी भी अपनी जिम्मेदारियों को न भुलाएं, नियमों का अनुपालन करें, व्यवस्था कायम करने में योगदान दें तथा अपने एवं अपने आस पड़ोस के लोगों का जीवन सुखमय बनाएं।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो चौदहवें ने बृहस्पतिवार को हंगरी के प्रधानमंत्री पीटर मग्यार का वैटिकन में स्वागत किया। वैटिकन प्रेस कार्यालय के अनुसार हंगरी के प्रधानमंत्री ने पोप के साथ मुलाकात करने के बाद वैटिकन विदेश सचिव महाधर्मदर्श पॉल रिचर्ड गलाघर से भी मुलाकात की। प्रेस कार्यालय से जारी बयान में कहा गया कि वैटिकन राज्य सचिवालय में सौहार्दपूर्ण बातचीत में अच्छे द्विपक्षीय रिश्तों एवं देश के जीवन में काथी कलीसिया के योगदान पर खुशी जाहिर की गई। फिर बातचीत हंगरी के सामाजिक आर्थिक हालात और आपसी लाभ के मुद्दों पर केंद्रित रही, खासकर शिक्षा एवं दुनिया के सबसे कमजोर ख्रिस्त समुदायों की सुरक्षा के बारे में। चर्चा में मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं, खासकर यूक्रेन और मिडल ईस्ट में संघर्षों पर विचारों का आदान प्रदान हुआ, जिसमें शांति को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से लगातार बढ़ती प्रतिबद्धता की उम्मीद जताई गई। पोप लियो चौदहवें ने अमेरिकी महाधर्मदर्श फुल्टन शीन की धन्या घोषणा से पहले उन्हें श्रद्धांजलि दी है और उनकी मीडिया की प्रेरिताई की सराहना की है। संत पेत्रस महागिरजाघर के प्रांगण में बुधवार को आम दर्शन समारोह में बोलते हुए पोप ने बृहस्पतिवार को होने वाली धन्या घोषणा को याद किया और महाधर्मदर्श शीन को प्रचार में लगे सभी लोगों के लिए एक मिसाल बताया। संत पापा ने बुधवार को कहा, कल मिसौरी के संत लुइस में आदरणीय फुल्टन शीन को धन्य घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा, मीडिया के माध्यम से अपने सुसमाचार प्रचार के काम के लिए लोकप्रिय इस पौत्र धर्मदक्ष का उदाहरण और बीच बचाव कई और लोगों के लिए भी इसी तरह खुशी और जोश के साथ सुसमाचार का संदेश फैलाने के नए तरीके खोजने हेतु प्रेरित करें। धन्या घोषणा गुरुवार 24 सितंबर 2026 को संत लुइस में होगा। कार्डिनल लुइस अंतोनियो तागले सुसमाचार प्रचार विभाग के प्रो प्रीफेक्ट धन्या घोषणा समारोह की अध्यक्षता करेंगे। 1895 में जन्मे और प्यास से अंकल फुल्टी के नाम से मशहूर महाधर्मदर्श शीन अपने टेलीविजन कार्यक्रम लाइफ इज वर्थ लिविंग के जरिए अमेरिकी परिवारों में एक लोकप्रिय पहचान बन गए। यह कार्यक्रम 1952 से 1957 तक चला और इसने लाखों दर्शकों को आकर्षित किया। महाधर्मदर्श शीन, जिन्होंने वॉशिंगटन और बेल्जियम में यूनिवर्सिटी ऑफ लुबेन में पढ़ाई की, 1953 में सबसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व का सम्मान पाकर एमी पुरस्कार जीता। 1966 में संत पापा पॉल षष्ठम ने उन्हें न्यूयॉर्क में रोचेस्टर का धर्माध्यक्ष नियुक्त किया। उन्होंने 3 साल बाद धर्म प्रांत के नेतृत्व से इस्तीफा दे दिया, लेकिन दिसंबर 1979 में अपनी मृत्यु तक अपनी सार्वजनिक सेवा जारी रखी। महाधर्मदर्श फुल्टन जे शीन एक दर्शन शास्त्री, ईश शास्त्री, पुरोहित और धर्माध्यक्ष, लेखक, कलीसिया के मिशनरी गतिविधि के समर्थक और रेडियो एवं टेलीविजन का इस्तेमाल करके सुसमाचार प्रचार करने वाले आधुनिक सुसमाचार प्रचारक थे। उन्होंने अपनी बौद्धिक क्षमता को, गहरी आध्यात्मिक आस्था और धर्म की सच्चाइयों को साफ साफ बताने के कमाल की काबिलियत के साथ मिलाया। वे प्रतिदिन पौत्र संस्कार की आराधना के लिए उत्साहित थे, जिससे उनका यीशु ख्रिस्त के साथ एक गहरा व्यक्तिगत संबंध बना। पीटर जॉन शीन का जन्म 8 मई 1895 को एलियनोस के एल पासो में हुआ था, जो न्यूटन एवं डेलिया शीन के 4 बेटों में से सबसे बड़े थे। एक पक्के कार्तिक परिवार में पले बढ़े फुल्टन ने कम उम्र में ही पुरोहित बनने का मन बना लिया था। उनका पुरोहिताभिषेक 20 सितंबर 1919 को प्योरिया धर्म प्रांत के लिए हुआ। उनकी बौद्धिक क्षमता को पहचानते हुए उनके अधिकारियों ने उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए यूरोप भेजा। 1923 में उन्होंने बेल्जियम में कार्तिक यूनिवर्सिटी ऑफ लुबेन से दर्शन शास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। कलीसिया के दर्शन शास्त्र एवं ईश शास्त्र परंपरा पर आधारित उनकी शैक्षणिक प्रशिक्षण ने उन्हें शिक्षा और सुसमाचार प्रचार की आजीवन प्रेरिताई के लिए तैयार किया। पढ़ाई के बाद शीन के धर्मदक्ष ने उन्हें पियोरिया के एक डाउनटाउन पल्ली में पल्ली पुरोहित नियुक्त किया, जहां वे उन लोगों को उपदेश देने और प्रेरित करने में सफल रहे जो धर्म बदल रहे थे। आज्ञा मानने की इस परीक्षा के बाद शीन के धर्माध्यक्ष ने उन्हें वॉशिंगटन डीसी में द कैथलिक यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका में दर्शन शास्त्र एवं ई शास्त्र पढ़ाने के लिए भेजा। उन्हें बौद्धिक अनुशासन के साथ साथ प्रेरिताई की बढ़ती चिंता भी थी। उन्होंने कलीसिया की शिक्षाओं को आम लोगों के लिए समझने लायक और दिलचस्प बनाने की कोशिश की। अपने पुरोहित जीवन में शीन ने प्रार्थना को अपनी प्रेरिताई के केंद्र में रखा।
परम पावन संस्कार की प्रतिदिन एक घंटे की आराधना उनके आध्यात्मिक जीवन का खास अभ्यास था। उन्होंने प्रार्थना के समय को अपने पुरोहिती पहचान और अपनी प्रेरिताई के सफल होने के लिए जरूरी माना। उन्होंने अपने पुरोहिताभिषेक के दिन से ही पौत्र संस्कार के सामने रोज एक घंटा व्यतीत किया। उनकी प्रार्थना, जिसे उन्होंने अपना दिन बनाने वाला घंटा बताया, सुसमाचार और यीशु ख्रिस्त के व्यक्तित्व के बारे में उनकी गहरी समझ का स्रोत थी। शेन की सार्वजनिक प्रेरिताई आधुनिक संचार माध्यमों द्वारा फैले। 1930 में अपनी प्रेरिताई शुरू करते हुए उन्होंने द कैथोलिक आवर नामक एक रेडियो कार्यक्रम पेश किया, जिसने पूरे अमेरिका में कैथोलिक धर्म शिक्षा को घरों तक पहुंचाया। उनके स्पष्ट तर्क, खूबसूरत प्रस्तुति एवं प्रेरितिक उत्साह ने 4 मिलियन से ज्यादा लोगों को आकर्षित किया। उन्हें उनकी बौद्धिक उदारता के लिए भी पहचाना जाता था, जिसमें वे मुश्किल सच को साफ तरीके से पेश करते थे और आधुनिक समाज की चुनौतियों के बीच हिम्मत की जरूरत को नजरअंदाज नहीं करते थे। उनके साहित्यिक कार्य उनके प्रसारण कैरियर के साथ विकसित हुए। उनकी 66 प्रकाशित किताबों में से लाइफ ऑफ क्राइस्ट को यीशु के व्यक्तित्व एवं सुसमाचार को समझने के लिए उनके सबसे प्रेरणादायक कार्यों में से एक माना जाता है। यूनेस्को की उपनिदेशक जनरल आशा रेनर ने वैटिकन न्यूज से बात करते हुए पोप लियो 14वें के 25 सितंबर को फ्रांस की प्रेरित यात्रा के दौरान यूनेस्को के दौरे की अहमियत के बारे बताया और इस बात पर जोर दिया कि कैसे बहुपक्षीय संस्थाएं शांति निर्माण में मदद कर सकती हैं। 1980 में पोप जॉन पॉल द्वितीय ने यूनेस्को में एक ऐतिहासिक भाषण दिया था। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है, जो शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति के माध्यम से शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए समर्पित है। 40 साल बाद जब दुनिया में झगड़े और ध्रुवीकरण जारी हैं, बहुपक्षीय संस्थाएं संकट का सामना कर रही हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तेजी से विकास चिंता का कारण बन रहा है। पोप लियो 14वें पेरिस में संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनेस्को का दौरा करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एवं यूनेस्को साझेदारों और सहयोगी लोगों को संबोधित करेंगे। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित उपदेशक ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं।

जिस तरह तुम नहीं जानते कि प्राण कहाँ जाते और माता के गर्भ में शरीर कैसे बनता है, उसी तरह तुम ईश्वर का कार्य नहीं समझ सकते जिसने सब कुछ को बनाया है। तुम प्रातः अपने खेत में बीज बो और संध्या तक काम करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हें किस काम में सफलता मिलेगी, इसमें या उसमें अथवा दोनों में। श्रोताओं, ये थे उपदेशक ग्रंथ के 11वें अध्याय के 5वें और 6वें पदों के शब्द। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। इन शब्दों से उपदेशक सुलेमान हमें फिर से मानवीय ज्ञान की सीमाओं का स्मरण दिलाता है। हम नहीं जानते कि प्राण कहाँ जाते और माता के गर्भ में शरीर कैसे बनता है। इसी तरह पृथ्वी पर ईश्वर के कार्य और उनके काम करने के पहलुओं को समझना मानव बुद्धि के परे है। माता के गर्भ में जीवन का प्रारंभ होता है, जो जन्म तक मनुष्य के लिए एक रहस्य ही बना रहता है। इन पदों में इस तथ्य को भी रेखांकित किया गया है कि सृष्टिकर्ता ईश्वर के कार्यों की थाह लेना हम मनुष्यों के लिए असंभव है। हवा के प्रवाह का उदाहरण देकर उपदेशक हमसे और युग युगांतर तक के मनुष्यों से ईश्वर के कार्यों के प्रति विनम्र बने रहने का आर्थ निवेदन करता है। उपदेशक का आग्रह है कि मनुष्य प्रातः अपने खेत में बीज बोए और संध्या तक काम करता रहे, क्योंकि मनुष्य यह नहीं जानता कि किस काम में उसे सफलता मिलेगी। इस पद में कृषि कार्य की छवि का उपयोग कर उपदेशक हमसे हर तरह के कामों के संपादन हेतु प्रोत्साहित करता है। भले ही काम कोई भी हो, वह भले ही सुबह किया जाए या शाम को, किसी भी समय काम से पीछे न हटा जाए। हर काम के लिए मनुष्य तत्पर रहे। मनुष्य किसी भी काम को करने से पीछे नहीं हटे, क्योंकि केवल काम करने के बाद ही वह फल की आशा कर सकता है। उपदेशक सुलेमान हम सबको अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है, ताकि हम विश्वासपूर्वक अपने समस्त कामों का संपादन करें, क्योंकि ऐसा कर ही हम सफलता का और अच्छे परिणाम का दीदार कर पाएंगे। इस प्रकार श्रोताओं, उपदेशक ग्रंथ का 11वां अध्याय हमें उदारता का आलिंगन करने के लिए आमंत्रित करता है। वह हमें स्वतंत्रता पूर्वक दान करने और अन्यों में अपनी संपत्ति साझा करने के लिए आमंत्रित करता है। हालांकि हमारी उदारता और हमारी भलाई का पुरस्कार हमें तुरंत नहीं दिखता, किंतु पुरस्कार अवश्य मिलेगा। विशेषकर इस अध्याय का 5वां पद स्मरण दिलाता है कि मानवीय समझ सीमित है और सृष्टिकर्ता ईश्वर के कार्यों को पूर्णतः बुद्धिगम्य करने में असमर्थ है। और 6वें पद की शिक्षा है कि प्रज्ञा और समझदारी के साथ हम अपने सभी कामों का संपादन करें तथा जीवन की अनिश्चितताओं के बावजूद मेहनत करते रहें।

और अब आइए 11वें अध्याय के अंतिम चार पद यानी कि 7 से लेकर 10 तक के पदों पर दृष्टिपात करें। इन पदों में उपदेशक ने जीवन के आनंद का विवरण दिया है। कहता है, ज्योति मधुर लगती है और आंखें सूर्य का प्रकाश देखकर प्रसन्न होती हैं। यदि मनुष्य वर्षों तक जीता रहता है तो उन सबों का आनंद मनाए, किंतु उसे याद रहे कि बुरे दिनों का अभाव नहीं और बाद में जो आएगा वह सब व्यर्थ है। युवक, अपनी जवानी में आनंद मनाओ, अपनी युवावस्था में मनोरंजन करो, अपने हृदय और अपनी आंखों की अभिलाषा पूरी करो, किंतु याद रखो कि ईश्वर तुम्हारे आचरण का लेखा मांगेगा। अपने हृदय से शोक को निकाल दो और अपने शरीर से कष्ट दूर कर दो, क्योंकि जीवन का प्रभात क्षण भंगुर है। श्रोताओं, सूर्य रोशनी प्रदान करता जिससे चित्त प्रसन्न हो जाता है तथा अंधकार समाप्त हो जाता है। उपदेशक का परामर्श है कि यदि किसी व्यक्ति की उम्र लंबी है, यदि वह दीर्घ काल तक जीता है, तो वह अपने जीवन के सभी वर्षों का आनंद उठाए, किंतु यह कदापि न भूले कि अच्छे दिनों के बाद बुरे दिनों का भी अभाव नहीं होगा। वस्तुतः उपदेशक का कहना है कि जीवन एक अनमोल वरदान है जिसका आनंद लिया जाना चाहिए, साथ ही भविष्य में आने वाली कठिनाइयों और समय की क्षण भंगुरता की सच्चाई को भी स्वीकार किया जाना चाहिए। श्रोताओं, 11वें अध्याय के 7वें पद में हमें एक बदलाव नजर आता है। यह पद जीवन की सरलता और उसके प्रतिदिन के वरदान होने का जश्न मनाता और लोगों को मुश्किल समय में यानी कि बीमारी का समय आने से पहले अथवा वृद्धावस्था के आने से पहले जीती जागती दुनिया की कद्र करने के लिए प्रोत्साहन देता है। इस प्रकार श्रोताओं, सूर्य और उसका प्रकाश जीवन का प्रतीक और मनुष्य को दिया गया अनमोल वरदान है। मनुष्य को हर दिन के लिए ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। फिर उक्त पद हमसे अपने समय की कीमत समझने और रोजमर्रा के पलों में खुशी ढूंढने का आग्रह करते हैं, साथ ही इसमें सच्चाई के साथ संतुलन रखने का भी अनुरोध किया गया है। उपदेशक स्मरण दिलाता है कि अच्छे दिन आते हैं, किंतु उनके बाद बुरे का आना भी संभव है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि हर दिन के उजाले के बाद रात का अंधकार अवश्यम भावी होता है। अस्तु, उपदेशक का परामर्श है कि अपने अच्छे दिनों में कुछ ऐसा करो जिससे कि तुम्हारे बुरे दिनों में भी तुम्हारा धैर्य न टूटे और साहस पूर्वक तुम सारी कठिनाइयों का सामना कर सको। आगे 11वें अध्याय के 9वें और 10वें पदों में उपदेशक युवकों का आह्वान कर कहता है कि जवानी में आप अवश्य आनंद मनाओ, मनोरंजन करो, किंतु अपना आचरण शुद्ध रखो। यह मत भूलो कि अपने सभी कार्यों के लिए तुम्हें उत्तर देना होगा। वह कहता है कि अपने हृदय से शोक को निकाल दो और अपने शरीर से कष्ट को दूर कर दो, क्योंकि जीवन का प्रभात क्षण भंगुर है। उपदेशक युवाओं को सावधान करता है कि वे अपनी जवानी का मजा अवश्य लें, स्वतंत्रता से जिएं, किंतु इस बात को कदापि न भूलें कि उन्हें अपने किए प्रत्येक कर्म का फल मिलेगा। यह कदापि न भूलें कि ईश्वर उन्हें उनके चयनों और उनके निर्णयों के लिए जिम्मेदार ठहराएंगे। प्रिय युवाओं, जवानी और जोश जल्दी ही बीत जाता है, इसलिए यौवन के वर्षों को हम कड़वाहट, नाराजगी अथवा बेमतलब के बोझ पर बर्बाद न करें, बल्कि इन अच्छे वर्षों का सदुपयोग करें। इन वर्षों में आज़ादी और आनंद के बीच कभी भी अपनी जिम्मेदारियों को न भुलाएं, नियमों का अनुपालन करें, व्यवस्था कायम करने में योगदान दें तथा अपने एवं अपने आस पड़ोस के लोगों का जीवन सुखमय बनाएं।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो चौदहवें ने बृहस्पतिवार को हंगरी के प्रधानमंत्री पीटर मग्यार का वैटिकन में स्वागत किया। वैटिकन प्रेस कार्यालय के अनुसार हंगरी के प्रधानमंत्री ने पोप के साथ मुलाकात करने के बाद वैटिकन विदेश सचिव महाधर्माध्यक्ष पॉल रिचर्ड गलाघा से भी मुलाकात की। प्रेस कार्यालय से जारी बयान में कहा गया कि वैटिकन राज्य सचिवालय में सौहार्दपूर्ण बातचीत में अच्छे द्विपक्षीय रिश्तों एवं देश के जीवन में कैथी कलीसिया के योगदान पर खुशी जाहिर की गई। फिर बातचीत हंगरी के सामाजिक आर्थिक हालात और आपसी लाभ के मुद्दों पर केंद्रित रही, खासकर शिक्षा एवं दुनिया के सबसे कमजोर ख्रिस्त समुदायों की सुरक्षा के बारे में। चर्चा में मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं, खासकर यूक्रेन और मिडल ईस्ट में संघर्षों पर विचारों का आदान प्रदान हुआ, जिसमें शांति को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से लगातार बढ़ती प्रतिबद्धता की उम्मीद जताई गई। पोप लियो चौदहवें ने अमेरिकी महाधर्माध्यक्ष फुल्टन शीन की धन्यवाद घोषणा से पहले उन्हें श्रद्धांजलि दी है और उनकी मीडिया की प्रेरिताय की सराहना की है। सेंट पेट्रस महागिरजाघर के प्रांगण में बुधवार को आम दर्शन समारोह में बोलते हुए पोप ने बृहस्पतिवार को होने वाली धन्यवाद घोषणा को याद किया और महाधर्माध्यक्ष शीन को प्रचार में लगे सभी लोगों के लिए एक मिसाल बताया। संत पापा ने बुधवार को कहा, कल मिसौरी के संत लुइस में आदरणीय फुल्टन शीन को धन्य घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा, मीडिया के माध्यम से अपने सुसमाचार प्रचार के काम के लिए लोकप्रिय इस पौत्र धर्मदक्ष का उदाहरण और बीच बचाव कई और लोगों के लिए भी इसी तरह खुशी और जोश के साथ सुसमाचार का संदेश फैलाने के नए तरीके खोजने हेतु प्रेरित करें। धन्य घोषणा गुरुवार 24 सितंबर 2026 को संत लुइस में होगा। कार्डिनल लुइस अंतोनियो तागले सुसमाचार प्रचार विभाग के प्रो प्रीफेक्ट धन्य घोषणा समारोह की अध्यक्षता करेंगे। 1895 में जन्मे और प्यास से अंकल फुल्टी के नाम से मशहूर महाधर्माध्यक्ष शीन अपने टेलीविजन कार्यक्रम लाइफ इज वर्थ लिविंग के जरिए अमेरिकी परिवारों में एक लोकप्रिय पहचान बन गए। यह कार्यक्रम 1952 से 1957 तक चला और इसने लाखों दर्शकों को आकर्षित किया। महाधर्माध्यक्ष शीन, जिन्होंने वॉशिंगटन और बेल्जियम में यूनिवर्सिटी ऑफ लुबेन में पढ़ाई की, 1953 में सबसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व का सम्मान पाकर एमी पुरस्कार जीता। 1966 में संत पापा पॉल षष्ठम ने उन्हें न्यूयॉर्क में रोचेस्टर का धर्माध्यक्ष नियुक्त किया। उन्होंने 3 साल बाद धर्म प्रांत के नेतृत्व से इस्तीफा दे दिया, लेकिन दिसंबर 1979 में अपनी मृत्यु तक अपनी सार्वजनिक सेवा जारी रखी। महाधर्माध्यक्ष फुल्टन जे शीन एक दर्शन शास्त्री, ईश शास्त्री, पुरोहित और धर्माध्यक्ष, लेखक, कलीसिया के मिशनरी गतिविधि के समर्थक और रेडियो एवं टेलीविजन का इस्तेमाल करके सुसमाचार प्रचार करने वाले आधुनिक सुसमाचार प्रचारक थे। उन्होंने अपनी बौद्धिक क्षमता को, गहरी आध्यात्मिक आस्था और धर्म की सच्चाइयों को साफ साफ बताने के कमाल की काबिलियत के साथ मिलाया। वे प्रतिदिन पौत्र संस्कार की आराधना के लिए उत्साहित थे, जिससे उनका यीशु ख्रिस्त के साथ एक गहरा व्यक्तिगत संबंध बना। पीटर जॉन शीन का जन्म 8 मई 1895 को एलियनोस के एल पासो में हुआ था, जो न्यूटन एवं डेलिया शीन के 4 बेटों में से सबसे बड़े थे। एक पक्के कैथोलिक परिवार में पले बढ़े फुल्टन ने कम उम्र में ही पुरोहित बनने का मन बना लिया था। उनका पुरोहिताभिषेक 20 सितंबर 1919 को पियोरिया धर्म प्रांत के लिए हुआ। उनकी बौद्धिक क्षमता को पहचानते हुए उनके अधिकारियों ने उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए यूरोप भेजा। 1923 में उन्होंने बेल्जियम में कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ लुबेन से दर्शन शास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। कलीसिया के दर्शन शास्त्र एवं ईश शास्त्र परंपरा पर आधारित उनकी शैक्षणिक प्रशिक्षण ने उन्हें शिक्षा और सुसमाचार प्रचार की आजीवन प्रेरिताई के लिए तैयार किया। पढ़ाई के बाद शीन के धर्माध्यक्ष ने उन्हें पियोरिया के एक डाउनटाउन पल्ली में पल्ली पुरोहित नियुक्त किया, जहां वे उन लोगों को उपदेश देने और प्रेरित करने में सफल रहे जो धर्म बदल रहे थे। आज्ञा मानने की इस परीक्षा के बाद शीन के धर्माध्यक्ष ने उन्हें वॉशिंगटन डीसी में द कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका में दर्शन शास्त्र एवं ईश शास्त्र पढ़ाने के लिए भेजा। उन्हें बौद्धिक अनुशासन के

साथ साथ प्रेरिता की बढ़ती चिंता भी थी। उन्होंने कलीसिया की शिक्षाओं को आम लोगों के लिए समझने लायक और दिलचस्प बनाने की कोशिश की। अपने पुरोहितीय जीवन में शीन ने प्रार्थना को अपनी प्रेरिता के केंद्र में रखा। परंपराओं संस्कार की प्रतिदिन एक घंटे की आराधना उनके आध्यात्मिक जीवन का खास अभ्यास था। उन्होंने प्रार्थना के समय को अपने पुरोहिती पहचान और अपनी प्रेरिता के सफल होने के लिए जरूरी माना। उन्होंने अपने पुरोहिताभिषेक के दिन से ही पौत्र संस्कार के सामने रोज एक घंटा व्यतीत किया। उनकी प्रार्थना, जिसे उन्होंने अपना दिन बनाने वाला घंटा बताया, सुसमाचार और यीशु ख्रिस्त के व्यक्तित्व के बारे में उनकी गहरी समझ का स्रोत थी। शेन की सार्वजनिक प्रेरिताएं आधुनिक संचार माध्यमों द्वारा फैले। 1930 में अपनी प्रेरिताएं शुरू करते हुए उन्होंने द कैथलिक आवर नामक एक रेडियो कार्यक्रम पेश किया, जिसने पूरे अमेरिका में कैथलिक धर्म शिक्षा को घरों तक पहुंचाया। उनके स्पष्ट तर्क, खूबसूरत प्रस्तुति एवं प्रेरितिक उत्साह ने 4 मिलियन से ज्यादा लोगों को आकर्षित किया। उन्हें उनकी बौद्धिक उदारता के लिए भी पहचाना जाता था, जिसमें वे मुश्किल सच को साफ तरीके से पेश करते थे और आधुनिक समाज की चुनौतियों के बीच हिम्मत की जरूरत को नजरअंदाज नहीं करते थे। उनके साहित्यिक कार्य उनके प्रसारण कैरियर के साथ विकसित हुए। उनकी 66 प्रकाशित किताबों में से लाइफ ऑफ क्राइस्ट को यीशु के व्यक्तित्व एवं सुसमाचार को समझने के लिए उनके सबसे प्रेरणादायक कार्यों में से एक माना जाता है। यूनेस्को की उपनिदेशक जनरल आशा रेनर ने वैटिकन न्यूज से बात करते हुए पोप लियो 14वें के 25 सितंबर को फ्रांस की प्रेरित यात्रा के दौरान यूनेस्को के दौरे की अहमियत के बारे बताया और इस बात पर जोर दिया कि कैसे बहुपक्षीय संस्थाएं शांति निर्माण में मदद कर सकती हैं। 1980 में पोप जॉन पॉल द्वितीय ने यूनेस्को में एक ऐतिहासिक भाषण दिया था। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है, जो शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति के माध्यम से शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए समर्पित है। 46 साल बाद जब दुनिया में झगड़े और ध्रुवीकरण जारी हैं, बहुपक्षीय संस्थाएं संकट का सामना कर रही हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तेजी से विकास चिंता का कारण बन रहा है। पोप लियो 14वें पेरिस में संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनेस्को का दौरा करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एवं यूनेस्को साझेदारों और सहयोगी लोगों को संबोधित करेंगे। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।